हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दे मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करें, सब वैरन को आस संघरे, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम्हें शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुज जू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाये प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बबतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, भेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उबजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आव सवारी, सेवकन को सेवकन सुख दियो, सतरन को पल मोबद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत, चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहि अपारा, जब आकर्ष करत हों कब हों, तुम मैं मिलत देहि तर सब हों, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्वकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ।

जा की सेवा नवनिध पावै ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सा सदा हजूरे ताकु अंधा जानत दूरे। जा की टहल पावै दरगह मान तिसै।

0: झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका शर्म करै, संग सहाय तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै थोए, गर्त प्रीत भस्म संग होए, अंधकूप मैं पतत बिकराल, नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात।
1: बाहर भेख अंतर मल माया, शब्द नाही कश कर छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इशनान, अंतर व्यापे लोभ सुवान, अंतर अग्न बाहर तन स्वा, गल पाथर किस तरह था, जाके अंतर बसा प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात, सोना अंधा कैसे मार्ग पावा, कर गलिहु उड़नि बहावा, कह बुझारत बुझ डूरा, निस कहिए तो समझ पूरा, कहाँ बिसन पद गावै गुंग, जतन करै तो पी सुर भंग, कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तू हाँ उस गबन, करतार करुणा मैं दीन बेनती कर, नानक तुमरी कृपा तर, संग सहाई सो आवै ना चीत, जो बराई ता सो प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतर बसा, आनंद केल माया रंग रसा, दृढ़ करवाना मन प्रतीत, काल न आवै मूड़े चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बिकार महा लोभ त्रोह, एहू जुगत बेहाने कई जन्म, नानक राख लेहो अपन कार कर्म, तू ठाकुर तुम पहे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे, कोई न जाना तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समग्री तुम रह सूत्र धारी, तुम ते हुए सुआग्याकारी, तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, सलोक देन हार प्रभ छोड़ का, लाग है आन सुआय, नानक कहु ना सी जाई, बिन नावै पत जाय, अष्टपदी दस बस तुले पाछा पावै, एक बस्त कारण बिखोट गवावै, एक पीना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा कहो कह करे, जिस ठाकुर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाका मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहु मन बूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगणत साहु अपनी दे रास, खाद पीत बरता आनंद उलास, अपनी अमान कश बौर साहु ले, अग्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवा, बौर उसका विश्वास ना होवै, जिसकी बस तिसे आज्ञा रख, प्रभु की आज्ञा माना माथा, उसे चौगन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत, बिरख खिशाया स्यो रंग लावै, ओह बिनसै ओह मन पछतावै, जो दिसै सो चालन हार, लपट रहो तै अंध अंधार, बटाऊ स्यो जो लावै नेह, ताको हाथ न आवत के, ताको हाथ न आवै के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तान तान कुटुंब सबाया, मिथ्या हौं मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रुमो अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रावण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिरह, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर्ब कर को थावै, मिथ्या मन पर लुभ लुभावै, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा, बिन बूझे मिथ्या सप है, सफल दे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कहु व सूचा, बिरथा नाम बिना तनंद, मुखावत ताका दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रण बिरथा बेहाय, मेघ बिना जो खेती जाय, गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारथ दाम तन तन ते जन जिह कट बस्यो हर नाव नानक ताका बल बल जाओ रहत अवर कश अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर पेख न काहू पीन अवर उपदेस आप ना कर आवत जावत जन्म मर जिसके अंतर बस निरंकार तिसकी सीख तर संसार जो तुम पहने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जन अपना किया आप मन आप करत नबेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा उपाम स्यानप सगल ते रहत सब कह जाना आत्म की रहत जिस भावै तिस लै लड़ लाए थन थनंतर रह समाए सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंध तन लावह तिस को सिमरत परम गत पावह जिह प्रसाद वसै सुख मंदर तिसह त्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्या बन जोग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसे त्याग का तबर लुभावै जिह प्रसाद सुख सेज सोईज मन आठ पैर ताका जस गावीज जिह प्रसाद तो सब को मान मुख ताको जास रसन बखाना जिह प्रसाद तिरवे रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावह नानक पासे ती कर जावह जिह प्रसाद रोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावा हर हर जस कहत जिह प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताक जिह प्रसाद तुझको ना पहुँच मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे जिह प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जिह प्रसादा भूखन पहरीज मन ते सिमरत क्यों आलस कीज जिह प्रसाद असव हस्ते सवारी मन तिस प्रभ को कबू नाम बिसारी जिह प्रसाद बाग मिलख तना राख भरोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सत सत्याई तिसै त्याय जो एक लख इहां उहां नानक तेरी रख जिह प्रसाद करह पुन बदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जिह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चेतारी जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जिह प्रसाद तेरी पत रहा गुर प्रसाद नानक जस कहा जिह प्रसाद सुनै करन नाद जिह प्रसाद पीखै बिस्माद जिह प्रसाद बोला अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना जिह प्रसाद हस्त कर चला जिह प्रसाद संपूर्ण फल जिह प्रसाद परम गत पावह जिह प्रसाद सुख सहज समावह ऐसा प्रभ त्याग अवर कद लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनहु बिसार जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जिह प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जिह प्रसाद तू पावह साच रे मन मेरे तू तासो राज जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपाय जप सोए आप जपाए जपाय सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते हुए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास प्रभ सो प्रसन्न बस मन सोए प्रभ दया ते मात उत्तम होए सरबन दान प्रभ तेरी मया आपो किशु न किनहु लया जित जित लावो तित लगा हर नाथ नानक इनका कशु ना हाथ सलोक अगम अगाध पारबम सोए जो जो कहा सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता सात जना की चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुखूजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग मिटाय अभिमान साधक संग प्रगट सो ज्ञान साधक संग बुझ प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਇੱਕ ਉਪਰ ਜਤਨ, ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭਰਨਾ ਕੌਣ ਪਰਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਗੋਚਰ ਮਿਲਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਆਵੈ ਬਸਵੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਦੇਣ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਤੁ ਤਾਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪੈਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨ ਬੀਂਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਬੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਹੀ ਹਉ ਤਾਪ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਤਜ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਣਾਈ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂ ਤਹਵਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤੇ ਗੋਚਰ ਲਹਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਜਰ ਸਹ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਤਨ ਪਾਵਾ, ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਨ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੁਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰਹਰਾ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਈਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸ਼ਰਤ ਰਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜ ਘੜ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਾਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗਾ, ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੈ, ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇਤਾ ਬਖਿਆਨੈ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇਹੁ ਗੁਣ ਤੇਹ ਦੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਦੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਦੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦ ਬਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨ ਪਾਈ, ਸਲੋਕ ਮਾਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖਾ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ, ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕਉ ਸੋਖ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੇਖ, ਜੋ ਬਸਤਾ ਕੋ ਖੋਦਾ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਪਾਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜੈਸੇ ਤਾਰੂ ਉਪਰ ਆਕਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਤੰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਪਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਪ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ, ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰਮਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਪਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏ ਕੁਪਰਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो माहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बस प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस कर ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रभाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बाल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जन, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का साब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उतारा जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्रया रूप न पेख नेत्र, साध की टैल संसंग हेत, करण ना सुना काहूं की निंदा, सब ते जाना आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरा, मन की बासना मन ते टरा, इंद्री जेत पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैष्णो सोजे सुपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते हुए पिन, कर्म करत हो वह ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नि बंच, केवल भगत कीर्तन संग्रच, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपाव, नानक हो वैष्णो परमगत पाव, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनस सगला परम, कर पूज सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोव, तिस भगवती की मत उत्तम होव, भगवंत की टहल कर नित नीत, मन तन अर्प बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसव, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पाव, सो पंड

कर्म जिसके मन पर ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन भाई तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगाह परवान, अपने दास को आप कृपा कर, तिस दास को सब सूजी पर, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हिताव, जीवन मुक्त सुखाव, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद त नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताए सही जुगत, नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखा तैसा तन्नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावा सुई फन होग, पसरु आप होया नत तरंग, लक्षण जाहे पार्वम के रंग, जैसी मात दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारा पार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट है पुजारी, कई कोटाचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन परमह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपी सरहोते, कई कोट आत्म ध्यान तहर, कई कोट कब काव विचार, कई कोट नवतन नाम त्यावह, नानक करते का अंत न पावह, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभेगातम निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिरा, कई कोट पर दुख न कर, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जानना करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रसभोगी, कई कोट पंखी सर फूफाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बह संतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपना सुत थारा, नानक जिस जिस भावा तिस तिस निस्तारा, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट भेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जा किनर पसाच, कई कोट पूत प्रे सूकर मिर्गाच, कई कोट सब ते नेरा सब हुते दूर, नानक आप अलिप्त रह आप अरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरह, कई कोट बो जोनी फिरह, कई कोट बैठती खाहे, कई कोट काला थक पाहे, कई कोट किए तनवंता, कई कोट माया मै चिंता, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट पैबे रागी, राम नाम संग तिन लिब लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पारवा मलहंते, कई कोट दर्शन प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनास, कई कोट मांग सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, तिनको कई को जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट हुए अवतार, कई जुगत की न विस्थार, कई बार पसर पासार, सदा सदा एक एकंकार, कई कोट कीने बहु पहांत, प्रभते हुए प्रमाहे समात, ताका अंत न जाना कोय, आपे आप नानक प्रवेश होए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत् के बेते, सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पय सद सद ही जीव।

दूजा कह दृष्टार अष्टपति आप कथे अब सुनने हार आपे एक आप विस्तार जस भावे तिष्ट हो पाए अपने भाने लई समाए तुम ते भिन्न नहीं किश होए अपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कवेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस राखे तिस कोहे न मार है सो मुआ जिस मनो बिसार है ते सज अवर कहाँ को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जुग जाके सब

मन अंतर विश्वास कर मानिया, करनहार नानक एक जानिया। जन लगा हरे के नाए, तिसकी आस न बिरथी जाए। सेवक को सेवा बन आई, हुकम बूझ परम पद पाई। इस ते ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पै निर्वैर, अंधन पूजै गुरु कै पैर। ए लोक सुख ये पर लोक सोहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सा

सर्वजोतमय जाकी जोत धार्यो स्वामी ओतपोत गुरु प्रसाद परम का नास नानक तिन में यह विश्वास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन जन जाता तिसकी ए रैत सत बचन साधु सब कैद जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस पावे ता करे विस्तार तिस पावे ता एक अंकार अनक कला लखी नहीं जाए जिस पावे सिलय मिलाए कवन निकट कवन कहिए दूर आपे आप भरपूर अंतरगा जिसे आप जनाए नानक से जन आप जाए सर्वभूत आप वरतारा सर्वन

आया, सबके मल लिप्त हो रहे। जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लहे समाए। इसते हुए सुनाई बुरा, उरे कहो किने कछ करा। आप भला कर तू तदनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साज तारी सब साच, ओत पोत अपन संगराज। ताकि गदमित कही न जाए, दूसर होए दसो जी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसार नानक यह जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आ मलाय लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का ए सुआ, जन के संग चित आवे नाव। आप मुक्त

वंशवली पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आसन त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के बचना अमलीक लाल ए रतना सुनत कमावत हो उदार आप तरे लोक का निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजे सुन सुन नंद करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तर करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुखमनि सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सुहोत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बौर न होवे आवन जान हर तन खाट जले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समुद्र सी एक दिष्टेता ए फल तिस जन के मुख पने गुरु नानक नाम भजन मन सुने एहो निदान जपे मन कोए सब युग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत के मन विश्राम कोट प्रात साध संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मस कर।

चापगवाम सगल समग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो तुमरी गात में तो तुम ही जानी नानक दास सदा कुर बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्यागिया जस डठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाव निधा बताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियों की जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु पंजा प्यारियां चौहान साहबजादियां चालिया मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्होंने आप जी का नाम जपया वंड के छकिया देख चलाई ते गवाई देख सुन के अनडिट किया तना प्यारियां सचारियां की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु जिन्हां सिंघां सिंघड़ियां ने धर्म हित सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई बेअंत कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग निभाई आप जी दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां शहीदां सिंघां सिंघड़ियां पचंगियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु पंजां तख्तां अते सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चेता वै चेत आवन का सदका सर्व सुखो वै जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचे रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नामदान श्री अमृतसर साहब जी के पवित्र दर्शन इशनान चौकियां झंडे बंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत का रखा पर अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता वाहिगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र चरण कमला पास अरदास बेनती है पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सरी विखे आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर दीवान सजे सजे हुए दीवाना बेच कथा कीर्तन ढाडी वारा राही आप जी का जस गायन किया गया आप जी की गुरबाणी का जाप करद्या तो समुची सेवा निभाद्या तो बेअंत भुलां हो गई होणगियां अणजाण बच्चे जाण के मुआफ करन अगे तो समत बख्शनी बाणी का भाव संगत दे हिरदियां ते वसाउणा ताराई संगत गुरसिखां दी हाजरी दर ते प्रवान करनी तिल फुल भेटावां दर ते मंजूर करनियां संगत नूं अपणे दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नामदान बख्शना बच्चियां दे सीस ते मेर भरिया हथ रखना पातशाही देशां विदेशां विच अंग संग हो के रख्या करनी पढ़ाई विच कामयाबियां बख्शनियां सोहणे कारोबार बख्शिश करने पातशाही जीवन काल विच बुलंदियां छूहण दा बल बख्शना माता पिता देश कौम दे सेवादार बनाउणा गुरसिखी जीवन जाच बख्शनी पातशाह जी कृपा करो पवित्र हुक्मनामे की दात बख्श के संगत नूं निहाल करो जी हुक्मनामे अनुसार चलन दा साथ संगत नूं बल बख्शना सुख वे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या भइया अकाल की तबै चलायो सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां जो प्रभ को मिल बोच है कोज शब्द में
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ

सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता समंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करहु केश मेहर उपावहु। डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अग्न बराबर तपा, पीतर वगै काती, प्राणवत नानक हुक्म पछाणा।

प्रेम गहयो बहि हर रंग पीना, पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हर खे पतीना। तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक,

कबीर मेरी बुद्ध का जमन करे तिसकार, जिन्हें हो जमुआ सिरजिया सो जपया पर विदगार।

होए। ऊच पवन कमन का ऊच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराय ताते पली मधु करी संत संग गुण गाय।

कबीर निर्मल बूंदे आकाश की पर गई भूम बेकार बिन संग त्यों मानईं होए गई पठशार कबीर निर्मल बूंदे आकाश की लीनी पूम मिलाई।

कबीर हज काबी हो जाए था, अगे मिलिया खुदाई। साई मुझ स्या लर परिया, तुझे किन फरमाई गाई। कबीर हज काबे हुई हुई गया, कीती बार कबीर। साई मुझ में क्या खता, मुखो न बोले पीर। कबीर जी जो मारे जोर कर, कहते हैं जो हलाल।

कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जात देखो तत तुम। कबीर बेकार चित्तवती, झूठे करते आस।

कबीर कोठे मंडप हित कर काहे मरो सवार कारज साढ़े तीन हथ कणी ता पौने चार कबीर जो मैं चितव ना कर क्या मेरे चितवे हुए अपना चित्त व्या हर करै।

सब कट देखो पियो, सुन सकी पी मैं जियो बसै, जिया मैं बसै के पियो, जियो पियो बुझो नहीं, घट मैं जियो के पियो, कबीर बामन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही।

जाए मिला तिन सजना, टुटा नाहीं ने हो। फरीदा मैं भुलावा पगदा, मत मैली हो जाए।

लावन मेरी पख जिन्ना खादी चोपड़ी कणे सहनगे दुख रुखी सुखी खाए कै

हम दुशांदा क्या हाल, कड़िए कड़िए मारी है पहरी लह सजाए, सोहेड़ा कड़ियाल जो

लाए चित मिट्टी पई अतुलवी कोई ना हुसी मित सरिदा मंडप माल ना लाए मर्ग सताणी चित तार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साई दा दरबार फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे परांद दरवेसां नूं लोड़ीऐ रुखां दी जीरांद

कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज, चुंजू बोड़न ना पीवे उड़न संधि डंज। हंस उडर कोदरा पया लोक विडारन जाए, गहला लोक न जानदा हंस ना कोदरा खाए।

जो सिर साई नानिवै सो सिर की जय काए कुन्नै हेठ जलाइए बालन संदै थाए। फरीदा किथै तैडे मापिया जिनी तू जने ओहे।

पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे मंदा किसनु आखिए जां तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कप्पिया जे गल कप्पै चुख पवन न इत्ती मामले सहा न इत्ती दुख।

नहीं चल गए फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हटाए देही रोग न लग गई पल्ले सब किश पाए फरीदा

आप सवारे मैं मिले, मैं मिलया सुख होए। फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। कंधे उत्ते रुखड़ा

फरीदा मौत दा बन्ना ए वैद सै ज्यो दरिया वै ढाह अगै दोजक तपया सुनिए हूल पवै काहा। एक नानो सब सूझी आई एक फिर देवे परवाह।

इत्युत सदा मुक्ते प्रभ दातो दातार परयो जाचक एक सरना मिला दान संतरेन जे लग पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर भावै देव दर्श मन चाओ भगत इव मन ठहरावै बलि उचरा गंद यार मैं सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन मैं जन नानक गुर पार ब्रह्म सवैये श्रीमुख बाक महला पंजवा एक ओंकार सत गुर प्रसाद काची देह मोफन बांधी साठ कठोर कुचील कुग्यानी तावत भ्रमत रहन नहीं पावत पार ब्रह्म की गत नहीं जानी जो बन रूप माया मदमाता बिचरत बिकल बड़ो अभिमानी पर तन पर पवाद नार निंदा यह मीठी जी माए हितानी बलबंच छाप करत्यु पावा पेखत सुनत प्रभ अंतर जामी सील धर्म दया सुच नास्त आयो शरण जी के दानी करण कारण करण करण कारण करण सिमरत सरीतर राख लियो नानक के स्वामी कीरत करन सरन मन मोहन जोहन पाप बिदारण को हर तारण तरण सिमरत सबैबिद कुलाय समूह उदारण सो चित चेत अचेत जान सत्संगत परम अंधेर मोहि कत तो मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रसना संग लो ओछो काज अल्प सुख बंधन कोट जन्म कहाँ दुख पौ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म सिमरो रंचक रेत खेत तन निर्मित दुर्लभ देह सवार तरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंदप भोजन की सब सूज परी मर्द मान होवत दिन प्रात नित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रम सिमर स्वामी एक करी कर गै लिहो कृपाल कृपा निध नानक काट ब्रह्म परी रे मन मूस बिला मैं गर्पत करतब करत महामुगना संपत दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रमद कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तास्यम बड़ियो सुखना बोयो बीज अहम मम अंकर बीतत औदय करत्या कन्ना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत्संगत नानक जग जानत सुपना देह ना गेह ना ने ना नीता माया मत कहा लोगारू छत्र ना पत्र ना चावर ना चावर बैती जात हृदय ना बिचारू

कहु दृष्ट निहारो। कोट ना योट ना कोस ना छोटा, करत विकार दो कर चारो। मित्र ना पुत्र कलतर साजन साख, उल्टत जात बिरख की चारों। दीन दयाल पुरख प्रपूरण,

ब्रह्माद कश्यप छंद मुनि सर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख तरण गगन आवत फुण तावत सिद्ध मनोख देव अर दानव एक तिल ताको मर्म न पावत प्रे प्रीत प्रेम रस भगति हर जनता कैं दर्श समावत तिस त्याग यान को जाचे मुख दंत रसन सगल का सजावत।

माया रंग बिरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है। एता गब आकाश न मावत बिष्टा अस्त क्रिम उदर परयो है। नै दिस ताए महा बिखिया को पर धन छीन अज्ञान हरयो है। जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जिम दूतन डन मृत मरयो है।

कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ पूर्ण होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्ब रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सोच क्रिया

जिन माणियो, राज जोग माणियो, बस्यो निर्वैर दंतर, सृष्ट सगल उदरी, नाम ले तरियो निरंतर, गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुगा लग, तन तन गुर तन, जन्म सके अथ पलो जग।

नितनव तन जग छायो। गुण गावै पायाल भगत ना गाद प्रियंगम, महादेव गुण रवै सदा जोगी जत जंगम। गुण गावै मन ब्यास जिन बेद व्याकरण विचारिया, ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुक्म सब सृष्ट सवारिया।

कट कट सहज समायो, सवैये महले दूजे के एक ओंकार, सत गुर प्रसाद। सोए पुरख तन करता कारण करतार करण समर्थो, सत गुरु तन नानक मस्तक तुम तरयो जन हथो, ता तरयो मस्तक हाथ सहज में बुठो, छज सुर नर गण मुन बोहिय अगाज, मार्यो कंट काल गरज तावत लियो बरज, पंच भूत एक कार राख ले समझ, जग जीतो गुरुद्वार खेल समत सार, राथुन मन लेव राख निरंकार, को कीरत कल सहार सबत दीप मजार, लैना जगतर गुर प्रस मुरार, जाके दृष्ट अमृत तार, कालक खाने उतार, तिमर ज्ञान जाहे दरस द्वार, वे जो सेवा शब्द सार, गाखड़ी

सत्संगत सहज सार जागीले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार सप्त दीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार तै तो दृढ़ो नाम अपार बिमल जास बिथार साधिक सिद्ध सोजन जिया को आधार तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार रहे जगत्र जल पदम विचार कल्पतर रोग बिदार संसार ताप निवार आत्मा त्रिबद तेरा किलवतार कहो कीरत कल सहार सप्तदीप मजार लहना जगत्र गुर परस मुरार।

अकल गुत जानी अकल गत गुर प्रवान जाकी दृष्टि अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पैर सील सुन्ना हो सख्त बिदार कहो कीरत काल सहार सबत दीप मझार लैणा जगत्र गुर प्रसमुरार।

काम और क्रोध विनाशन, लोभ मोह वास करण, शरण जाचक व्रत पालन, आत्मरत संग्रहण, कहन अमृत कल टालन। सतगुरु कल सतगुरु तिलक, सत लागै सो पै तरै, गुर जगत फिरन सी अंगरो, राज जोग लहना करै। सदाया कल लिव रह, करण सोए चाचारा, द्रुम स्पूर जो निवै खवै कस बिमल बिचारा। एह तत् जाण्यो सर्वगत लख बिडाणी, सहज पाए संचयो किरण अमृत कल बाणी। गुर गम प्रमाण तै पायो, सत संतोख ग्राह जुलयो, हर परस्यो कल सुमुल वै, जन दर्शन लैणे पयो, मन विश्वास पायो, गैर गौ हदरथ दियो, गरल नास तन नठियो, मैं अंतरगत पियो, रिद विश्वास जाग्यो, रिद विगास जाग्यो, वलक कल तरी जुगंतर, सदगुर सह समाओ द्रव्यो सामान निरंतर, उदारो चित दारद हरण पिकंथ है, कलमल त्रसन सद रंग सहज कुल उचरै, जस जंपो लैने रसन। नाम अवखद नाम आधार, हर नाम समाद सुख सदा नाम निशान, सुहै रंग रतो नाम स्यों, कल नाम सुर नरा बोहै।

जन्म मरण दुख जाए, सवैये महल्ले तीजे के एक ओंकार। सत गुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा, जाका एक नाम अचल संसारे। जिन भगत पव जल तारे, सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम। रस क नानक लैणा थप्यो जैन सर्ब सिद्धि, कव जन कल सबुद्धि। कीरत जन अमरदास बिस्तरिया, कीरत रव किरण प्रगट संसारा। साख तुरोवर मवल सरा, उत्तर दखण पुब अर पश्चिम। जय जय कारज पंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदाय। उल्ट गंग पश्चिम तरिया, सोई नाम अछल भगता पव तारण। अमरदास गुर को फुरिया, सिमरै सोई नाम जाखियर किन्नर। साधक सिद्ध समाध हरा, सिमरै नखियत्र वरतृ मंडल नारदाद। प्रहलाद वरा ससीर अर सूर, नाम उला सह सह लोजन उदरिया। सोई नाम अचल भगता पव तारण, अमरदास गुर को फुरिया। सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन, शिव सनकाल समुतरिया। 84 सिद्ध बुद्ध जित राते, बरीक पव जल तरिया। उदो करूर त्रिलोचन नामा, कल कबीर के लवेख हरिया। सोई नाम अचल भगता पव तारिण, अमरदास गुर को फुरिया। तित नाम लागते तीस ते आवे, जति तपी सर मन वसया। सोई नाम सिमर गंगे पितामा, चरण चेते अमृत रसया। तित नाम गुरु गंभीर, गुरु मत सत कर संगत उदरिया। सोई नाम अचल भगता पव तारण, अमरदास गुर को फुरिया। नाम कीर्त संसार, किरण रव सुतर सुरतर साखा। उत्तर दखण पुब देश पश्चिम जस भाखा, जन्म दायो सके अथ। जित नाम हरि दय निवास, सुर नर गण गंतर्ब छे दर्शन आसास। भलो प्रसिद्ध ते जो तनो, कल जोड़ करते आयो। सोई नाम भगत पव जल हरण, गुरु अमरदास तै पायो। नाम ते आवे देवते तीस, अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे। जा नाम समाधि वरख सोग सम कर सहारे, नाम शिरोमण सर्व मैं भगत रहे लिवतार। सोई नाम पदार्थ अमर गुर, तुस दियो करतार। सत सुरो सील बलवंत, सत भाए संगत सघन गुरु मत। निर्वैर लीना जस धीरज, तुहर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना। पर सह संत प्यार जय करतारा, संजोग सतगुरु सेव सुख पायो। अमर गुर की तो जोग, नाम नावण नाम रस। खाण अर भोजन नाम रस, सदा चाए मुख मिष्ट बाणी। धन सतगुरु सेवे जिस पसाए, गत अगम जानी। कुला संभू कुल संभू समतरै, पायो नाम निवास। के अथ जन्म कल उचरै, अंगल पर से अमर प्रगास। बारज कर दाहणै सिर सन्मुख, मुख जो वै। रिद बसैबा वांग जो तीन लोकां तर मोहै, हृद बसा कहियो। सोए रस तिन्हीं जातो, मुखो भगति उचरै अमर गुर इतरंग रातो। मस्तक निशान सचो, कर्म कल जोड़ते करते आयो। पर से गुरु सतगुरु तिलक, सर्ब इच तन पायो। चरण ता परस के अथ, चरण गुर अमल पवल रै। हाथ ता पर सके अथ, हाथ लगा गुरे अमर पै। जी ता पर सके अथ, जी गुर अमर पणिजै। नैण ता पर सके अथ, नयन गुर अमर पखिजै। श्रवण ता पर सके अथ, श्रवण गुर अमर सुनिजै। सके अथ सोही अजित ही बसै, गुरे अमरदास निज जगत पेत। सके अथ सो सिर्फ जाल पपणै, जो सिर निवै गुर अमर नित। ते नर दुख ना भुख, ते नर नितान नो कहिए। ते नर सुख नो हुए, ते नर संयंत न लहिए। ते नर सेव नो करे, ते नर सह सह संपै। ते नर दुलीचै बहे, ते नर यो थप बि थपै। सुख लहे ते नर संसार महै, अपह पट रिप मद तेह। सके अथ ते नर जाल पपणै, गुरे अमरदास सो प्रसन्न जेह। तै पड़े हुए एक मन तरे, एक कर एक बचाण्यो। नयन बैण मोय एक, एक धूं ठाए ना जाण्यो।
सुपने एक प्रतख एक एक समय लीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैतीस ना खीणो एक जे लाख लखुआ लख एक एक कर वर्ण्यो गुरु अमरदास जाल पपणै तू एक लोड़ एक मन्यो जे मत गई जय देव जे मत नामै समाणी जे मत त्रिलोचन चित भगत कंबीर जाणी रुक मंगद करतूत राम जंपो नित भाई मरीक प्रहलाद सरण गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध त्रिसना तजे सो मत जल जाने जुगत गुरु अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुरु अमरदास परसिया पोहम पातक बिना से गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साध के आसास है गुरु अमरदास परसिया ध्यान लहिया पौ मुके गुरु अमरदास परसिया पौ लब्बै गो चुके एक बिन दुगन जो तो रह जा सुमंत्र मन वै लहे जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठा मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संगरियो ता ते अंगद लहना प्रगटतास चरना लिव रहो तित नाम कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखानो जो गुण लख अगम तना गुण अंत न जानो भोय थो बिताता निर्मयो सब संगत कुल उदरण गुरु अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरण आप नारायण कला तार जग में परवरियो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जा कहता भरपूर शब्द दीपक दीपायो जे सिखा संग्रयो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहण संग हो गुरु अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो जब तप सत संतोख पिख दर्शन गुर सिखा सरण परे ते उबरे छोड़ जा पुर की लिखा भगत पाए भरपूर हृदय उचरै करतारै

पर हर पर चित चित बहु अरदास कहो पर कह पी ना सको सर्ब चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवै निसान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखै सुब दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम लख कारण पुरख जो फरमावै सो कहो गुर अमरदास कारण करण जिव तू रखै तिव रहो पिखे के गुर ज्ञान ध्यान तत्स्यो तत् मिलावै सच सच जानिए एक चितै लिव लावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत न धावै निरंकार कै वसै दे सुकम बुज विचार पावै कल माहे रूप करता पुरख सो जाने जिन किस कियो गुर मिलियो सोए पिखा कहै सहज रंग दर्शन दियो रहियो संत हो टोल साध बो तेरे डठे सन्यासी तपसी मुखो पंडित मिठे बरस एक हो फिरयो किन्ने नु परचो लायो कहते आ कहते सुनी रात को कुसी ना आयो हर नाम छोड़ दूजा लगे तिनके गुण हो क्या कहो गुर दई मिलायो पिखिया जिव तू रखे तिव रहो पैर समात सुनाओ ज्ञान आसन चढ़ियो तम तनक कर गहयो भगत सीला सर लड़ियो पै नरपो हर अटल मन शब्द गुर ने जा गड़ियो काम क्रोध लोभ मोह पत पंच दूत बिखंडो

जगजतो सतगुर प्रमाण मन एक ते आयो। तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो। नवनिद नाम निधान रिद सिद ताकि दासी सहज सरोवर मिलियो। पुरख भेट्यो अविनाशी

गुरु सत कब नल कह, जिन गुरु न देख्यो न कियो, ते अक्यथ संसार मैं। गुरु गुरु गुर कर मन मेरे, तारण तरन समृत कल युग, सुनत समाद शब्द जिस केरे। फुन दुखन नाश सुखदायक सूरो, जो धरत ध्यान बसत तेह नेरे। पूरो पुरख हृदय हर सिमरत, मुख देखत अग जाहे परेरे। जौ हर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत, गुरु गुरु गुर कर मन मेरे। गुरुमुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास पियूस पवन की, वंचित सिद्ध को बिद मिलायो। पूर्ण पो मन ठौर बसो, रस बासन स्यों जो दहंग दिशतायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी, समजलन नतीर बिपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिर हथ तरयो, गुरकीनी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अघन हरयो, निसबासुर एक समान ध्यान सु, नाम सुने सुत भान डरयो। पण दास वास जगत्र गुरु की, पारस पेट परस करयो। रामदास गुरु हर सत कियो, समरथ गुरु सिर हथ धरयो। आव राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाखश फारे कर आज, फन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभु जी। शीनत बस्त्र दीन बहुसाज, सुदामा अपदाते राखिया, गनका पढ़त पूरे ते काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न, कल जग होए राखो दास पाठ की लाज। झूलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जप नाम नाम, निध जप रसनिया है निस रस सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइये गुरमुख, ते आइये अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद तरो पंचपू, बस करो जन्म कुल उदरु द्वार हर मानियो। चौंता सब सुख इत उत तुम बंचवो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर, अगम गुण जा निधान हर मन धरो। ध्यान अहनस करो बचन गुर हृदय धर। फुन गुरु जल विमले अथाह मजन करु, संत गुर सिख तरु नाम सच रंग सर। सदा निरवैर निरंकार निरभउ, जप प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुर मुख भजो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाइए, उदर गुर गहर गंभीर बेअंत हर। नाम नग हीर मन बलत लेवलाइए, फन गुरु परमल सरस करत कंचन। परस मैल दुरमत हिरत, शब्द गुर त्याइए। अमृत प्रवाह शुंट कंत सद द्वार, जिस ज्ञान गौर विमल सर संत सिख नाई है। नाम निर्बाण निधान हर उर तरो, गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाई है। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर। गणतर तीस गुर बचन सुन कन रे, फुन तर ते संत हित भगत गुर गुर कर। तरु प्रहलाद गुर मिलत मुन जान रे,
तरै नार दाद सन कद हर गुर मुख तरै एक नाम लग तजो रस अन रे। दास बेनत कह नाम गुर मुख लह गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे। श्री गुरु साहिब सब उपर करी कृपा सतजुग जंतरु पारु श्री प्रहलाद भगति उधरियं हस्त कमल माथे पर धरियं। अलख रूप जी लख्या ना जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई। गुर के बचन सत जी तारो मानस जन्म दे निस्तारो। गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया न कोए। गुर प्रसाद प्रपाईऐ गुर बिन मुक्त न होए। गुरु नानक निकट बसै बनवारी तिन लैणा थाप जोत जगतारी। लैणा पंत धर्म का किया अमरदास भले कौ दिया। तिन श्री रामदास सोडी थिर थप्यो हर का नाम अख निद अप्यो। अप्यो हर नाम अख निद चहु जुग गुरसेवा कर फल लहियं। बंदह जो चरण शरण सुख पावै परमानंद गुरमुख कहियं। परतख दे पार ब्रह्म स्वामी आद रूप पोखण भरण। सतगुर गुरसेव अलख गत जा की श्री रामदास तारण तरण। जेह अमृत बचन बाणी साधु जाना जपह कर विचित चाओ। आनंद नित मंगल गुरदर्शन सफल संसार। संसार सफल गंगा गुरदर्शन परसन परम पवित्र गति। जीतै जम लोक पतत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान रति। रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ घर मुन बंचै जा की शरण। सतगुर गुर सेव अलखत जा की श्री रामदास तारण तरण। संसार अगम सागर तुला हर नाम गुरु मुख पाया। जग जन्म मरण पगा यह आई ही है प्रतीत। प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच्च पई। ताज माया भो लो बर लालच काम क्रोध की वृथा गई। अवे लोक्या ब्रह्म परम सब छुटक्या दिब दिष्ट कारण करण। सतगुर गुर सेव अलखत जा की श्री रामदास तारण तरण। परताप सदा गुर का घट घट परगाश पया जस जन कै। एक पढ़ै सुनै गावै प्रभातै करै इश्नान। इश्नान करै प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा बिद सहित करं। कंचन तन होए परस पारस को जोत स्वरूपी ध्यान धरं। जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रह पूर्वो विद वर्णन। सतगुर गुर सेवय लख गत जा की श्री रामदास तारण तरण। जिनह बात निश्चल त्रु जानी तेई जीव काल ते बचा। तिन तरियो समुद्र रुद्र खिनेक मैं जल हर बिंब जुगत जग रचा। कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा। श्री गुरु साहिब सब उपर मन बच क्रम सेवियै सचा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।
कमल नैन मधुर बैन कूट सैन संग शोभ कैतमा जसोद जिस दही भात खाह जियो। देख रूप अत अनूप मोह महा मग पही कंकनी शब्द चंत कार खेल पाह जियो। काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सक ईश बम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाह जियो। सत साच श्रीनिवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। राम नाम परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशमार सरभर को काहे जियो। सुथर चित भगत हित भेग धरियो हरनाक्ष हरियो नक बेदार जियो। शंख चक्र गदा पद्म आपे आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लख कौन ताह जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। पीत बसन कुंद दसन प्रया सहित कंठ माल मुक्त शीस मोर पंख चाह जियो। बेब जीर बड़े तीर धर्म आंग्या लख गम खेल किया आपने उशाह जियो। अकथ कथा कथी न जाय तीन लोक रया समाय सुत सिद्ध रूप धरियो शाहन कशाह जियो। सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। सतगुरु सतगुरु सतगुरु गोबिंद जियो। बलै शलन सबल मलन भगत फलन कान कौर निक लंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रमन दुरत दमन सुकल भमन कुशल करन सर्व भूत आप ही देवा देव सहस मुख फनेंद जियो। जर्म कर्म मच्छ कच्छ हुबरा जमना के कूल खेल खेल्यो जिन गेंद जियो। नाम सार ही ये तार तज बिकार मन गैंद सतगुरु सतगुरु सतगुरु खुबिंद जियो। श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। गुर कया मान निज निदान सच जान मंत्र है निस बासर हुए कल्याण लह परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड तो हम मैं का फंद काट साध संग रत जियो। दे गे त्रेसने चित बलास जगत एह चरण कमल सदा स्यों दृढ़ता करमत जियो। नाम सार ही ए तार ताज बेकार मन गैंद श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभ सदा सलामत कह ना सकै को तू कद का। ब्रह्मा बिशन सिरे तया गणत तिनको मोह पया मन मद का। चौरासी लख ज्यों ने उपाई रिजक दिया सब हूं कौ तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग वाह गुरु तेरा सब सदका। वाह वाह का बड़ा तमाशा आपे हसै आप ही चितवै आपे चंद सूर प्रगाशा। आपे जल आपे थल थमना आपे किया कट कट बास। आपे नर आपे फुन नारी आपे सारे आप ही पासा। गुरमुख संगत सब बिचारू वाह वाह का बड़ा तमाशा। किया खेल बड़ मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना। तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृते मीठे जा के बचना। मन ब्रह्मा दिक रुद्रा दिक काल का काल निरंजन जचना। गुर प्रसाद पाइया परमार्थ सत्संगत सेती मन खचना। किया खेल बड़ मेल तमाशा
वाह गुरु तेरी सब रचना, अगम अनंत अनाद आदि जिस कोय न जाने, शिव बिरंच तर ध्यान तै जिस वेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, भंजन गड़न समथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो, जन मथुरा रस नरस है, श्री सतनाम करता पुरख गुर रामदास चित्तां बसै, गुरु समरथ गह करिया त्रो बुद्ध सुमत समारन को, फन त्रम तुजा फैरंत सदायक पुंज तरंग निवारण को, मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु न बिचारन को, हर नाम बोहित बढ़ो कल में पव सागर पार उतारन को, संतत ही सत संगत संग सुरंग रति जस गावत है, धर्म पंथ धर्यो धरणी धरिया प्रहे लिव धारण तावत है, मथुरा पन भाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है, रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है, निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर, गहर गंभीर यथात बड़ सुभर सदा सबिद रतनागर, संत मराल करें कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुखागर, कलयुग धुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर, जाको मन ध्यान तर फेरत सगल जुग कबहू को पावे आत्म प्रगाश को, वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मन गहन तजात कबिलास को, जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेक किए फिरत उदास को, सुतिन सत गुर सुख पाए कृपा तारे जी, नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को, नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज ते लोग प्रगासे, देखत दर्श पटक प्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बैगासी, सेवक सेख सदायत लुभत अल समूह ज्यों कुसुम सुबासी, विद्यमान गुर आप थप्यु थेर साचो तख्त गुरु रामदास, तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत रिदर सिद्ध न छोड़े सत, दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कयो ए तथ, ताहे कहां परवाह काहू की जाके बसीस धर्यो गुर हथ, तीन भवन भरपूर रहो सोई अपन सरस कियो न जगत कोई, अपने आप ही उपायो सुर नर या सुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुर असुर नर गण गंधर्व खुजंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभव पुरखोत्तम अपार परे, करण करण समरथ सदा सोई सर्ब जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जय जय जग मैं तैं हर परम पद पायो।

कामे अगोचर गत गंभीर सतगुर परचायो गुर परचय परवान राज में जोग कमायो धन धन।

प्रगट ज्योत जगमगै तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस गुर गुरु कहायो भन मथुरा मूर सदा थिर लाए चित सन मुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगल

हृदय गुर अर्जन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। जब लो नहीं पागल लार उदय

जग तारण कौ अवतार बनायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। काल समुद्र भय रूप, प्रगट हर नामे उदाहरण, बसें संत जिस हृदय दुख दरिद्र नवारण। निर्मल पेख अपार, तास में अवर न कोई, मन बच जिन जानयो भयो ते संसार सोई। तरन गगन नव खंड मै, ज्योत स्वरूपी रहो पर, पन मथुरा कछ भेद नहीं, गुर अर्जन प्रतख हर। अजय गंग जल अटल, सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चबर सिर ढुलै, नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। मिल नानक अंगद अमर गुर, गुर रामदास हर पै गयो, हर बंस जगत जस संचरियो, सो कमन कह श्री गुरु मोयो। देवपुरी में गयो, आप परमेश्वर पायो, हर सिंघासन दियो श्री गुरु तह बैठायो। रहस कियो सुर देव तोहे, जस जय जय जंपै, असुर गए ते भाग पाप तन पीतर कंपै। काटे सो पाप तिन नरों के, गुर रामदास जिन पायो, शतर सिंघासन।

चुकाया, दुनिया कारण दीन गवाया। है करके ओ करेन, गल्ला पिटन सिर खोहेन, नाओ लैन यार करन समाई, नानक तिन बलिहार जाई।

जे लख कर्म कमाहें, जम जगत न लगई जे चलै सतगुर पाए। नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेलै मेलाए। कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए। मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए। सर्व

0: संत सभा जयकार कर, गुरमुख कर्म कमाओ, निर्मल नावन नानका, गुर तीरथ दरियाओ। जन्मे का फल क्या गणी, जा हर भगत न पाओ, पैंदा खादा बाद है, जा मन दूजा पाओ। वेखण सुनना झूठ है, मुख झूठा लाओ, नानक नाम सला तू हुर हो मैं आवो जाओ। हैण विरले नाही घणे, फैल फकर संसार, नानक लगी
1: तो नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान। नानक नाम सला तू रो मैं आवो जाओ। हैन विरले नाही घणे, फैल फकड़ संसार, नानक लगी तुर मरै जीवन नाही तान। छोटे सेती जो मरे लगी सा प्रवान, जिसनू लाए तिस लगै लगी ता प्रवान, फिर पकामना निकले लाया तिन सजान। भांडा धोवे कौन जे कच्चा साजिया, तातू पांजर लाए कूड़ा पाजिया। भांडा अणगराज ते सुभाव सी, परम जोर जगाए वाजा वावसी। मनो जंद कूप के बिद न जाननी, मन अंदा उंदा कवल दिसन खरे करूप। एक कह जान न कहा बोजन, ते नार सुगड़ स्वरूप। एक ना नाद ना भेद न गिया, रस रस कस ना जणंत। एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर, अखर का प्यो न लहंत। नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करंत। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जप तप संयम कमावे कर्म, सिं सो कर रखे धर्म, बंधन तोड़े होवे मुक्त। सोई ब्राह्मण पूजन जोत, खतरी सो जो कर्म का सूर, पुन दान का करे शरीर। खेद बछाने बीजे दान, सो खतरी दर गह परवान। लभ लोभ जय कूड़ कमावे, अपना कीता आपै पावै। तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन हड न बाल। सिर पैरी क्या फेड़िया, अंदर प्री संभाल। सबने घटी सौ वसै, सह बिन घट न कोए। नानक ते सुहागणी जिन गुरमुख प्रगट होए, जो तो प्रेम खेलन का चाओ।

मर जाई। पोत कलत मोहित है अंत बेली को ना सखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाए नाम वसे मन आई। नानक से बड़े बड़ भागी जय गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन नावे दुख रोए। आत्मा राम ना पूजनी दूजे क्यों सुख होए। हमें अंतर मैल है शब्द न काढ तोए। नानक बिन नावे मैलिया मुए जन्म पदार्थ कोए। मनमुख बोले अंदले तिसमें अग्नि का वास। बाणी सुरत न बूजनी शब्द न करे प्रगास। उन्हें अपनी अंदर शोध नहीं गुर बचन करे विश्वास। ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है नित हर लिव सदा विगास। हर ज्ञानी की रखदा हो सद बलिहारी तास। गुरमुख जो हर सेव दे जन नानक दागा दास। माया पुयंगम सर्प है जाके रिया विख माए। बेका मारन हर नाम है गुर गरड़ शब्द मुख पाए। जन को पूर्व लिखिया तन सदगुर मिलिया आए। मेरे सदगुर निर्मल होया बिखों में गया बिलाए।

जाए, सतगुर पुरख निर्भय रहै, नित हिरदे हर लिवलाए, निर्भैर नाल बैर रचायदा, अपने कर लूकी लाए, अंतर क्रोध अहंकार है, अंधन जले सदा दुख पाए, कूड़ बोल बोल नित भौंक दे, नित बिख खादे दूजे पाए, बिख माया कारण भरम दे, फिर कर कर पत गवाए, बेसवा केरे पूत ज्यो पिता नाम दिस जाए, हर हर नाम न चेतनी करते आप खुआए, हर गुरमुख कृपा धारियन जन बिछड़े आप मिलाए, जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुर लागे पाए, नाम लगे से उबरे बिन नावे जा पुर जाहे, नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए ता मन पय आनंद, गुर प्रसादी बूझिए सातन सुती न चंद, जिनको पूर्व लिखिया तना पेटे गुर गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद, सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाना मन लैन हर नाम रखे उरधार, एथे उथे मनियन हर नाम लगे व्यापार, गुरमुख शब्द संजाप दे ते साचे दरबार, सच्चा सौदा खर्च सच अंतर परम प्यार, जम काल नेड़ न आवई आ बख्शे करदार, नानक नाम रते से तनवंत हैन निर्धन होर संसार, जन कीटे कर नाम हर बिन नावे ठबर न ठाओ, गुरमति नाओ मन वस सहज सहज समाओ, वड़भागी नाम ते आया एन सलागा पाओ, जन नानक मंगे तूड़त न हो सत गुरबाणे जाओ, लाख चौरासी

बिन हर्षांतन आवे के से आगे करी पुकार। वरभागी सदगुर पाया बूझा ब्रह्म विचार। तिसनागन सब बुझ गई जन नानक हर और धार। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार। हर कृपा करके बख्श लो हो पापी वड गुनहगार। हर जो लेखे बार न आवई तू बख्श मिला बनहार। गुर तुठे हर प्रभ मेलिया सब किल कट विकार। जिना हर हर नाम ते आया जन नानक तिन जयकार। विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पै पाए। जन्म मरण ने चल पे गुरमुख नाम त्याए। गुर साधु संगत मिले हीरे रतन लभान। नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहान। मनमुख नाम न चेत्यो तेग जीवन तेग वास। जिसदा दिता खाना पहनना सो मन न वस्यो गुणतास। ए मन शब्द न पेद्यो क्यों होवे करवास। मन मुखिया दुहागणी आवण जान मुयास। गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखियास। हर हर नाम उधारिया हर हृदय कमल प्रगास। सतगुर सेवन अपना हो संत बलिहारी तास। नानक तिन मुख उजले जनंतर नाम प्रगास। शब्द मरे सोई जन सिजे बिन शब्द मुक्त न होई। पेख कर है बहु कर्म बूते पाए दूजे पर जब गोई। नानक बिन सतगुर नाम ना पाईए जे सो लोचे कोई। हर का नाव अतवाड़ी ऊंचा ऊंची हूं ऊंचा होई। अपड़ कोई ना सकई जे सो लोचे कोई। मुग संजम हच्छा ना हो वही कर पेख पवे सब कोई। गुर की पौड़ी जाय चढ़े कर्म प्राप्त होई। अंतर आय बसे गुर शब्द विचारे कोई। नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए।

पुराण बेख माया मोहना मेट बिच हों में आवण जान सतगुर मिलिया माली उतरी हर जपिया पुरख सुजान जिना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद गुरबाण माया मोह चित वदे वो आसा लोभ विकार मन मुख अस्तर नाथी है मर बिन सजाए खिनवार वड़पाग होवे सतगुर मिले होमे तजे विकार हर नामा जाप सुख पाया जन नानक शब्द विचार बिन सतगुर भक्त न हो भई नाम ना लगे प्यार जन नानक नाम रादया गुर के है तो प्यार लोभी का बसाओ ना की जे का पार बसाए अंत काल तिथे तो है जिथे हाथ न पाए मनुख सेती संग करे मोह काल दाग लगाए मुँह काले तन लोभिया जसन जन्म गवाए सत संगत हर मेल प्रभ हर नाम बसे मन आए जन मरण की मल उतर जन नानक हर गुण गाए तोर हर प्रभ करते लिखिया सुमेटना न जाए जियो पिंड सावते सदा प्रतिपाल करे हर राय चुगल निंदक भूखे रोल मुए इना हाथ ना किथा उपाए बाहर पखंड सब कर्म करे मर हृदय कपट कमाए खेत शरीर जो भी जिए सो अंत खलो आए नानक की प्रभ बेनती हर भाव बख्श मिलाए मन आवण जान न सूझे ना सूझे दरबार माया मोह पलटिया अंतरा ज्ञान।

0: हर हर नाम त्याए मन, हर दरगाह पावे मान, केलोग पाप सब कटिए हों में चुके गुमान, गुरम कमल विकसया सवात ब्रह्म पशान, हर हर कृपा तार प्रभ जन नानक जा पर नाम, तनाश्री तनवंती जानिए पाई जा सतगुर की कार कमाए, तन मन सौंपे जी सौंपाई लय हुक्म फिराओ, जय बिसव है बैसे पाई जय पे जैत जाओ, एवड तन होर को नहीं पाई जेवड़ सच्चा नाओ, सदा सच्चे के गुण गावा पाई सदा सच्चे के संग रहाओ, पहनन गुण चंगियाइया पाई अपनी पत के साध आपे खाए, तिसका क्या सलाही है पाई दर्शन को बल जाए, सत गुर विच वड्डियां वड्याइया पाई घर मिले ता पाए, एक हुक्म ना जानी पाई दूजे पाए फिर आए, संगत ढोई ना मिले पाई बैसन मिले न थाओ, नानक हुक्म तेना मनाय सी पाई जन तुरे कमाया नाओ, जिना तुरे कमाया नाओ, जिना तुरे कमाया नाओ, दिन बिटो हो वाह नानक हुक्म तेना मनासी पाई जिना तुरे कमाया नाओ, तेन बिटो हो वारिया पाई तेन को सद मलिहारे जाओ, से दाड़िया सचिया जे गुर चरनी लागन, आंदन सेवन गुर अपना आनदन आनदर हन, नानक से मोह सोने सच्चे दर दिसन, मुख सच्चे सच दाड़िया सच बोले सच कमाहे, सच्चा शब्द मन बसया सत गुर माए समाहे, सच्ची राशि सच तन उत्तम पदवी पाहे, सच सुने सच मान लैन सच्ची कार कमाहे, सच्ची दरगाह बैसना सच्चे माए समाहे, नानक बिन सतगुर सच न पाइए मन भूल जाहे, बविहा प्रयो प्रयो करे जल नद प्रेम प्यार, गुर मिले शीतल जल पाया सब दुख निवारण हार, तस चुके सहज उपजे चुके कुक पुकार, नानक गुरमुख शांत होए नाम रखो उधार, बावी है तू सच चो सच्चे सोल विलाए, बोलिया तेरा थाए पवे गुरमुख होए अलाए, शब्द चीन तख्यु तरे मन लै जाए, चारे कुंडा चौक वरसदा बूंद पवे सह सुभाए, जाली ते सब उपजे बिन जल प्यास न जाए, नानक हर जल जन पिया तस भूख न लागे आए, बावी हा तू सहज बोल सच्चे शब्द सुपाए, सब कुछ तेरे नाल सतगुर दिया दिखाए,
1: आप पछाणे प्रीतम मिलाए बूठा शबर लाए, चेम चेम अमृत वरसदा तिशना भुख सब जाए, को उपकार न होवै ज्योति ज्योत मलाए, नानक सुख सवन सुहागणी सच्चे नाम समाए, तुरों खसम भेजया सच्चे हुक्म पठाए, इंद वरसे दया कर गूढ़ी शैबर लाए, बाबी है तन मन सुख होए जां तत बूंद मोह पाए, अंतन बहुता उपजाए धरती सोभा पाए, अन दिन लोक भगत कराए गुर कै शब्द समाए, आपे सच्चा बख्श लाए कर कृपा करे रजाए, हर गुण गावो कामणी सच्चे शब समाए, भय का सह शिंगार कर आओ सच रहो लिव लाए, नानक नमो मन वसै हर दरगे ले छाए, बबिया सगली धरती जे फिरे उड़ चढ़े आकाश, सतगुर मिलिया जल पाइए चुके भूख प्यास, जियो पिंड सब तिसका ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਸ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਘਾਟ ਘਾਟੇ ਕੋ ਵਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਸੇ ਬਸੰਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਸਮਾਏ ਹਰ ਬੂਠਾ ਮਨ ਤਨ ਸਭ ਪਰ ਫੜਾਏ ਸਭ ਜਗ ਰਿਆਵਲ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜੇ ਤਨ ਮਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਏ ਹਰ ਬੂਠਾਏ ਮਨ ਤਨ ਬੜਫੜਾਏ ਸਭ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਵੱਡੜੇ ਚਾਲ ਚਲਾਮ ਬੜਾਏ ਨਾਵੜਾ ਲਈਏ ਕੇਸਾ ਨਾਉ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਏ ਭਾਨਣ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹਰ ਹਟ ਵੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰੇ ਬੋਲੇ ਭਲੀ ਬਾਣ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ ਕਿਆ ਉੱਚੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਿਨ ਜਗਤ ਅਪਾਏ ਹਰ ਅੰਕਿਆ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂਕਰ ਬਾਣ ਆਪ ਛੋੜੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸਚਾਏ ਵਿਚਾਰ ਹੋਮੈ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ ਬੋਜਨ ਸਕਾਂਕਾਰ ਵਾਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰੇ ਬਣ ਤੁਜੇ ਧਿਆਨ ਦਾਨ ਸਦਾ ਵਿਹਾਨ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਕਰ ਥੇ ਵਿਚਾਰ ਨਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੇ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਜੋਗ ਨ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ

चारे कुंडा जे पवाए वेद पढ़े जो चार नानु साचा पेटे हर मन वसाए पावे मोह द्वार नानक उमरते खसमंगा मत पवी फिरे चल चेता मन मोसो कर दो ती सुख पुछे मेता गुरमह जो कर दोस्ती सतगुर सो लाए चेत जमन मन का मूल कटिया सुख हो भी मेता पुल आप समझा सी जाको नद कराए दानो नदी बारी कर्ण पलाव कराए श्लोक महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद वड भागिया सुहागणी जिन्ना गुर मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए वाह वाह सतगुर पुरख है जिन सा जाता सोए जेत मिलिया तिख उतरै तन मन शीतल होए वाह वाह सतगुर सतपुरख है जिनो समसव कोए वाह वाह सतगुर मरवैर है जे निंदा उतल होए वाह वाह सतगुर सजाण है जे संत ब्रह्म विचार वाह वाह सतगुर निरंकार है जे संतरा पारावार वाह वाह सतगुरु है जे साज दड़ाए सोए नानक सतगुर वाह वाह जेतै नाम प्राप्त होए हर प्रभ सचा सोहिला गुरमुख नाम गोविंदा अन दिन नाम सलाना हर जपया मन मंद वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंदा जन नानक नाम सुलाया बौना मन तन भंग मुंह प्रिया सुने हो क्यों सज्जन मिले प्यारे आ होंठ निंदी तिन सज्जन सच सवारे आ सतगुर मैडा मित है जे मिले ता ये मन वारे आ देंदा मुंह पैर दस हर सज्जन सिजन हारिया नानक हो पिर पा लिया पढ़ा सतगुर नाल दिखा लिया हो खड़ी निहाली पंद मद मुह सज्जन आवै को आन मिलावे अज मैं पिर मेल मिलावै हो जियो करी तिस विटो चौखनी जो मैं प्री दिखावै नानक हरो दयाल तां गुरपुरा मिलावै अंतर जोर हो मैं तन माया कूड़ी आवे जाए सतगुर का फरमाया माना सके दो तर तरिया न जाए नदर कर जैसे अपने सो चले सतगुर पाए सतगुर का दर्शन सफल है जो इसे सो फल पाए जिन्हें सतगुर मन्या हो तिन के लागू पाए नानक ताका दास है जे अन दिन रहे लिव लाए जिन्ना प्री प्यार बिंदर सिंह को तृप्ति आए नानक मिले सुभाए गुरमुख ए मन रैसी है जिन्ना प्री प्यार क्यों जीवन पिर बार है जां सो देखने अपना नानक तीवन भी हराए जिन्ना गुरमुख अंदर ने हों तै प्रीतम सचे लाया राती अते डे नानक प्रेम समाया गुरमुख सची आशकी जित प्रीतम सचा पाई आनंदन रहे आनंद नानक सहज समाई सचा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाई है कब न होवे भंग नानक कर गुण गाई है जिन्ना अंदर सचा ने क्यों जीवन प्री भी होने गुरम मिले आप नानक चिरी विशुने जिन कहो प्रेम प्यार तो आपे लाया कर्म कर नानक लिहो मलाए मैं जाच दीजे नाम हर गुरम हसै गुरम रोवै जे गुरम करे साई भगत होवै
ਗੁਰਮੋਹ ਸੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਾਵੇ ਪਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ, ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਮੁਖ ਸਾਧੂ ਜਲੈ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ। ਤਿੰਨ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਜੇ ਆ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰੀ, ਮਾਂ ਕਰੜੀ ਸੁਖਸਾਰ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ, ਤਿਸ ਲਾਏ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵੇ ਲੱਗਿਆ, ਭਉ ਜਲ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਚ ਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਅੰਤਰ ਬੇਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸਭ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਮਨ ਮੋਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪੁੱਤ ਕਲਤ ਕਟੰਬ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਏ। ਦਰਗੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਗੀ ਛਡਾਏ। ਬਿਨਾਵੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਦਾਈ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਨ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿਛੜ ਸਭ ਜਾਏ। ਗੁਰਮਗ ਹੁਮਨੇ ਸਿਕੇਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਹੀ ਸੋ ਪਾਏ। ਹੁਕਮੋ ਸੇਵੇ ਹੁਕਮ ਅਰਾਧੈ, ਹੁਕਮੇ ਸਮੇ ਸਮਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਨੇ ਸੁ ਸੰਜਮ, ਮਨ ਚ ਦਿਆ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੇ ਹੁਕਮੇ ਬੂਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਰ, ਤਿੰਨਾ ਹੁਕਮੇ ਲਏ ਮਲਾਏ।

मंगदमादम सो प्रभ चेतनयावै नानक नहीं करम तिचर मोल ना थुड़ींदो जिचर आप कर पाल शब्द अखुट बाबा नानका का

नहीं काल पहुँचे हो आन को नानक नर बावर क्यों न पज भगवान तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान।

सदा बस्त तुम साथ, तन तन जेता तो को तन तन जे तो को दियो, तास्यो ने हो न कीन कौ नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन, तन तन संपै सुख दियो, हर जय नी कैताम कौ नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय कौ नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत होए जे सिमरत गत पाईए, ते पज रहतै मीत कौ नानक सुन रे मना, औद कटत है नीत पांच तत् को तन रचयो, जानो चतर सुजान जह तय उपजो नानका, लीन ताहे मैं मान काट काट मैं हर जू बस, संतन के हो पुकार कौ नानक ते पज माना, पौने दे उतरे पार सुख दुख जय पर से नहीं, लोभ मोह अभमान कौ नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान उस्तत निंदया नाहीं जे, कंचन लो समान कौ नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान कौ नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे तै जान पै काहू को देत न, नै पै मानत आन कौ नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान जे बिखे आ सगली तजी, लियो पेख बैराग कौ नानक सुन रे मना, ते नर माथे पाग जे माया ममता तजी, सब ते पयो दास कौ नानक सुन रे मना, ते काट ब्राह्मण वास जे प्राणी हो मैं तजी,

बोधा उपज बिन सनीत जाग रचना तैसे रची कौ नानक सुन मीत प्राणी कछु न चेतई।

मना दुर्लभ मानु कदे माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सरान जो प्राणी निस दिन भज रूप राम ते जान हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान मन माया मैं बादरेओ बिसरेओ गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम प्राणी राम न चेतई मद माया कह अंद

दुख में संग न कोए, कौ नानक हर भज मंगा, अंत सहाई हो, जन्म जन्म पर मत फेरियो, मिट्यो न जम को त्रास, कौ नानक हर भज मना, निरपै पावै बास, जतन बहुत मैं कर रहो, मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदेओ, राख लियो भगवान, बाल जवानी और बिरद फुन, तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन, बिरता सब ही मान, करनो तो सो ना कियो, परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंद, मन माया मैं रम रेओ, निकसत नाहि न मीत, नानक मूरत चितर ज्यों, छाड़त नाहि न पीत, नार चाहत कश्यार और

वार श्री बहुत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक लेंते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस जिठै सब दो जाए। तेग बहादुर सिमरया करनौन दयावे ताए। सब ताई होई सहाय दसवीं पातशाह। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जीओ सब ताई होई सहाय। दसों पातशाह।

जो प्राणे सदिन पजय रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फाद रहे हो बिसरे हो गोविंद नाम, कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम नचेत मद माया के अंध, कहो नानक हर भजन बिन परत ताए जम फंद। सुख में बहु संगी पे दुख में संग ना कोए, कहो नानक।

कहो नानक हर पज मना निरपय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यो न मन को मान। दुर्मत से नानक फदियो राख लियो भगवान। बाल जवानी अर बिरध फोन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सो ना कियो परियो लोभ कै फंद। नानक समयो राम गयो अब क्यों रोवते अंध।

नर चाहत कछ और की और पई, चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोए, कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कहो नानक मन सिमरते पूर्ण हो मैं काम। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें काश तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देखो बिन सैशन में मीत, जे प्राणी हर जस कहो नानक ते जग जीत। जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हरे अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी कह नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। स्वामी को गरे ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक वे बिद हर पजो एक मन होए एक चित।

सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते ही ना कौ नानक वे बिद पई तऊ नहर रसलीना। निज कर देखे ओ जगत मैं को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है ते राखो मन माहे। जाग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कै नानक थिर नार है जो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बो परवार कौ नानक थिर काश नहीं सुपने ज्यों संसार।

जो उपजो सो बिन सह परो आज कै काल, नानक हर गुण गायले छाड़ सगल जंजाल दोहरा। बाल चुटक्यो बंधन परे कशु ना होते उपाय, कह नानक अब ओट हार गाज ज्यो हो सहाय। बाल होवा बंधन छुटे सब किश होते उपाय, नानक सब किश तुमरे हाथ में तुम ही हो सहाय। सांग

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग आला पै आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच राग ने संग उचरही प्रथम पैर वे बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुण्य सले की पई बारी ये पैरों की पांचो नारी पंचम हरक दिशाक सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आला पै संग रागनी पांचों था पै गोंड करी यर देव गंधारी गंधारी सी होती उचारी तनासरी ये पांचों गाये माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चांड कौशक उबारा खाओ खटियो पौराण दगाए अष्टमाल कौशक संगलाई।

सुरमा नंद पास कर आए, चंद्र बिंब मंगलन सोहाए, सरस बाने आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

सब मेल श्री राघव गावें, पांचों संग बरंगन लावें, बैरारी करनाटी तरी, गवरी गावें आसावरी। ते पाचें सिंधवी अलापी, श्री राग स्यो पांचों थापी। सालू सारंग सागरा और गोंड गंभीर, अष्ट

हर भगत निरंजनिया अपने देश दे अपने देश भगतां दा गदार, देश नाल गदारी करन वाला और अपने ही देश दे अपने ही भरावां दे नाल गदारी करके उन्हां नूं गिरफ्तार करवाउण वाला। इहनूं किते ना किते सीआईडी मिल जांदी है भी मस्से रंगड़ दा सिर वढ के कौन लेके गया। इहने सीआईडी कढ के ते गुरु प्यारे फिर जकरिया खान नूं दस्सिया है कि सरदार महताब सिंह मीरां कोटिया ते सुखा सिंह कंबो की माड़ी वाला वह तरखाणा का मुंडा कहिंदा इन्हां दोनों का कम है। सो गुरु प्यारे मैं अपने ख्यालों नूं संकोचा आने वाले टाइम दे विच इस तो अगला इतिहास कि किवें इन्हां दे परिवारां दे नाल हुंदी है। ये सूबे दे भेजे हुए नूरदीन एक फौजदार वह किवें पिंडां दे विच जाके गश्ती फौजां लैके सिंघां दी भाल करदे ने, आने वाले वक्त दे विच ये इतिहास तुहाडे नाल सांझा करन दा यतन करांगे। सो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। बुलाओ फतेह, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।